गंगे थुए ताई को शिव गेरे गगते सुए ताई को शिव गएं गगते सुए ताई को शिव गएं अगो मारा गगते से सुकु गिन्ये निगे चेंगो दादी के मे बरता नोट नबो ते सुकु उरु के टिकट टिट नंबर 1 नबो बी सिस्टम अल जिंगे टिकट टिट दादी अल जिंगे टिकट टिट मियो मियो को गेचे ल स्टार 274 हैश स्टार 274 हैश ओ तु यना पी सिस्टम चबो 150,000 पी सिस्टम Star 274 hash. Ticket number one, you know? Ticket number one, you know?

तो बताइएगा था गैंग गैंग वन मिनट अडे स्टार 274 हैश वन मिनट कहना कि लगाने में जब पीए सिस्टम चे बोइंग स्टार 274 हैश टिकट नंबर वन इंपियो पियो